0: 아용 땅에 크고니 도무즈라 다만이 돈친 직통 니비아라 거글라카니 셰추인지나 다용 땅에 개테 쳇득 나인지나 쳇득 용 땅에 아름기 용 땅에 렁코터도고터 다니 젠바 아야는 자마 니 젠바 아야는 자마 영마나 티르니 고무랑 달니 아름기 용 땅에 ते कोस्टली के जगन जामा कते तमुई दादी लंकुर नेतग कोरिस मु तोंदग शोंतना ता लंकुर कोनु ततक ते इंगन वना ता नेतग यंग तंग नी पर त खर्ग चिन छक इंगन ततक त खर्गोगा तमनी यंग तंग लंकुर क तक मुमा ततक ति तासन ग तोंदग शों नु गंदे यंग तंग खर्ग यरंग तंग नायम चोन छाव न ता खुजग न खर्ग यंग तंग लंकुर त ने जें बा यार तंग हरे चरा खर्ग यार कोरी ता नेते यंग तंग लग न लगतक छात मन न जामा ति छंग थंग जग न जामा ते यंग तंग ता जें बा ग चि न चा तंग त खर्ग यंग तंग लंकुर कोर को मनसुन नु गतम त यो नु खाया माय दली यो तंग देलन कुल गाज ग दले नु कुर तो चिन जातम त शों तंग ना ता छु रंगे नु कुर ग द कुइन बि थानी छु रंगे यो रंग तंग नि यो तंग गन जातम त खर गो ग जि तम जुर ता जे क चा छु नु ता कोनी से कोन द छु र
1: छोर हु न मे सु ग मेंगो गे केला टैंक क्लब शी तुन ममंग द सी ठोमरा सा खं रों खं सो से मे छु न म जों यी हिशा जे जु तंग मे छु न शों कुप जे रंग छु शे तंग Mamang Kangjuk Jiye Tharlima Jini Ergu Shila Dupi Meksul Mengu Taiji Hibsha Natsu Hunjung Shini Waasin Chi Chadig Charjig Zuki Aloshi Adigchi Meksul Denjig Chi Khtambil Tung Tenshang Ergu Tung Ergi Kungli Ma Sharmira Dui Tapa Shaki
2: Jachim Hibsha
3: Re chayang zhoma di na gongni da jokhe eeshib ka chanpan di nang arang di binan zhongko nga kong dani shiongnu gan njimzhil tuanshin shiongrji ga da dobdok soso gan gan chak khor ka zhoji damu ga zhoji zhig zhangyi da tangi da zhojin di thani tog tongo mamang chamkhang ga da zhojin da gan gomji gwar sim di zachyut zhan yeshib sawu yi dani u dian khong la sokan sordil yi debzhin tam reo ga kargi xanjil likong ga xanjil yeke la sokaf di zhongha mamang chintan jakob ka mong tun chamzhong ga kargi da tonchin soso dambu ga tonchin soso uril da tangi da tondag da yoga jian bai takib jani damu ga zhoji zhigri di dang na da tarkib sacha gang tang gang zhigina dan jimzhil ka tonchin chema chong ᱥᱚᱢ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱣᱱᱨᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱪᱤᱜᱥᱟ ᱜᱚᱱᱟᱡᱜᱟ ᱦᱚᱸᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱞᱚᱝᱠᱷᱚᱨᱟ ᱧᱮᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱟᱞᱚᱝᱠᱷᱚᱨᱱᱫ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱪᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱤ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱪᱚ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱨᱡᱮᱱᱩ ᱫᱟᱥᱭᱟ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱯᱥᱟ ᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱤ ᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱚᱡᱮ ᱫᱟᱢᱩ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱮᱨ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱣᱟ ᱯᱭᱟᱪᱷᱢ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱜᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱚᱨᱱᱤᱝ ᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜ ᱡᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
0: ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱠ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱠᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱫ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱤᱠᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱥᱜᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱚᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱚᱭ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱫᱤ ᱢᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱤᱥᱠᱤᱯ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱦᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱭᱥᱤᱠ ᱠᱟ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱞᱤ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱤᱧᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱧᱩᱜᱩ ᱜᱟ ᱛᱮᱛᱮᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱧᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱᱥᱩᱢ ᱪᱷᱟᱫᱜ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱣᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱝᱠᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱛ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡᱜᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱢᱩᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱣᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱩᱡᱤᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱪᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱮᱜᱩᱜᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱩᱝᱠᱤᱱ ᱪᱟᱫᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱛᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱜᱱᱮ ᱧᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱱᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱧᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱭᱟᱨ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱫᱚᱠᱩ ᱤᱢ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱭᱚᱠ ᱠᱤᱥᱮᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱠᱤ ᱠᱤ ᱧᱮᱝ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱷᱩᱝᱞᱤ ᱜᱤ ᱧᱮᱝ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱧᱮ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱜᱤᱨᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨᱟᱛ